0: प्रिय
1: कबाड़ की बना हूँ सिड़ी सिड़ी की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकमी था ही इदा सिड़ी सिड़ी की इथोनी नी दियोगा की इदा सिड़ी सिड़ी की हाना जजा खानी नी दियोगा की जाबुनी हाना जजा उखानी।